0: It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये आइकॉनिक लाइन मैंने प्यार किया की भी थी, और ऑल्सो मैं उस दिन व्हेन हैरी मेट साली देख रही थी और उसमें हैरी इज टेलिंग साली कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो शी सेज क्या बात कर रहा है, टू विच ही सेज कि इन दोनों लोगों में से, एक लड़के और लड़की में से, वन ऑफ देम विल हैव फीलिंग्स ऑफ इंटीमेसी अबाउट द अदर पर्सन, और वहीं दोस्ती एक नया मोड़ ले लेती है। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपको भी यही लगता है कि अगर एक दोस्ती में एक लड़का और लड़की दोस्त हैं भी, तो भी एट सम पॉइंट वन ऑफ देम विल स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, हाँ या ना? एंड टू टेल मी द आंसर टू दैट वन, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पता नहीं।
1: अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि आपको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, व्हेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हेट डॉग्स। आपने झूठ इसलिए बोला था ताकि गर्लफ्रेंड मान जाए, एंड यू एंड अप मेकिंग सम स्वीट टेंडर लव। हाँ,
2: द सीक्रेट बॉक्स।
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सीक्रेट है दैट यू कांट डिस्कस विद एनीबडी एल्स, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी। यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, एंड वी विल गेट टॉकिंग। फॉर नाउ मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
3: गुड गुड।
1: तो मिस्ट्री कॉलर, ये जो आप ऑलरेडी इतने सीक्रेटिव साउंड कर रहे हो, आपकी जिंदगी में सीक्रेट है क्या?
3: तो मतलब सीक्रेट क्या है, क्या बताऊं। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी वांट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट।
1: ओके,
3: ठीक है ना। तो वो कुछ कोर्स करे मेकअप रिलेटेड।
1: हां,
3: तो शी गिफ्टेड मी डिओड्रेंट।
1: ओके,
3: लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे।
1: हां,
3: तो मतलब इतना घटिया उसकी स्मेल, इतनी घटिया। मैं सोचता हूँ मैं क्या यूज करूँ उसको। तो अब मैं उसको एज अ टॉयलेट फ्रेशनर यूज करता हूँ। और इत्तेफाक से लास्ट वीकेंड वो मेरे घर आ गई।
1: हाँ,
3: मेरी गर्लफ्रेंड।
1: हाँ,
3: और उसने वो स्मेल कर लिया। तो उसने बोला ये डिओड्रेंट महक रहा है ना। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ, वो तुम्हारी याद आ रही थी ना, तो इसी तरह से मैंने उसको यूज किया तुम्हारी याद में। तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं उसको बोल पाऊँ कि मेकअप के कोर्स के साथ साथ एक डिओड्रेंट या परफ्यूम का कोर्स भी कर सकते।
1: You are so funny. I hope आपकी गर्लफ्रेंड ये सुन रही हो, बट क्योंकि मैंने मिस्ट्री कॉलर कहा है, उसे मतलब बहुत कम चांस है कि उसे आइडिया होगा। बट आपको थोड़ी सी जिंदगी में तसल्ली मिल जाए दैट थिंग्स डू चेंज, आप एक गहरी सांस लो और मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? गहरी सांस तो ले लो जरा।
4: You've been roshified.
1: You poor thing, यार मुझे तो खराब लग रहा है। मतलब पहले तो आप बाथरूम में स्प्रे कर रहे हो वो गंदा सा डियो, और उसके बाद गर्लफ्रेंड टपक पड़ती है जब बाथरूम में वो डियो है। बट ऑल द बेस्ट विद योर रिलेशनशिप यार। थैंक यू सो मच मिस्ट्री कॉलर। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, क्या सोच रहे हो, जल्दी से ढूंढो मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अगर आप जिंदगी के साथ जूझ रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, समथिंग कुड एक्चुअली हेल्प यू एंड समथिंग जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. इमेजिन अगर आप चाणक्य नीति अप्लाई करें टू योर रिलेशनशिप्स. साउंड्स फनी बट इट इज ट्रू. मेरे साथ हैं ऑन द मिर्ची हॉटलाइन अभिराज गुप्ता, हु इज द ऑथर ऑफ द चाणक्य प्ले बुक. वेलकम टू द मिर्ची हॉटलाइन.
1: थैंक यू सो मच
0: अभिराज. मेरा आपसे ना एक सवाल है. मैं ये जानना चाहती हूँ हाइपोथेटिकली, अगर चाणक्य होते इन द डेटिंग सीन इन 2026, ठीक है, तो वो 2026 में डेट करने के बाद और चाणक्य नीति लिखने के बाद क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देते टू अदर कपल्स हु वर हिज फ्रेंड्स और व्हाटएवर?
1: आई थिंक पर्सनली चाणक्य वुड हैव नोटिस कि आजकल ना हम सारे अपना गुड और अपनी पोटेंशियल मार्केट करते हैं. यू नो, लाइक ऑब्वियसली अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है कुछ हुई तो ऑब्वियसली अगर आप वो सुनने डालोगे, यू नो, वी जस्ट पोर्ट्रे द बेस्ट सेल्फ. नो वन इज पोर्ट्रेइंग द ट्रू सेल्फ. सो चाणक्य वुड प्रोबली वुड से के यू नो डोंट डेट पोटेंशियल, डेट रियलिटी. एंड ही वुड प्रोबली जस्ट से के देखिए डेट समवन और हूज इक्वल टू यू और इज बेटर, बिकॉज उससे आप पे इम्प्रूवमेंट उसको हमेशा बढ़ता रहेगा.
0: That's actually so cool. मैंने ये सोचा नहीं था, मतलब in so many simple words, कि अपने या तो अपने जैसा कोई डेट करो या अपने से बेहतर, who will inspire you to get better as well.
1: Better is better. Like, better would have been better, but अगर वो नहीं मिलता तो अपने जैसा.
0: That is actually a very cool piece of advice. Thank you so much for sharing that advice with me. चाणक्य नहीं है तो क्या हुआ, आप यहाँ पर हो, it pretty much makes up for his lack.
1: Thank you
0: so much.

आप मुझसे बात करना चाहते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi, it's hot.

पर बैठा, जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: बॉय बन जाता हूँ।
1: या उड़ती हैं खबरें लेता ना स्ट्रेस।
2: नो
1: गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट।
2: हो
1: प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
2: या

Sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni da.

टॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दहिया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकर छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

बट जो उनका नया वाला गाना है, इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन, रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, जहां थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है, इट फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, ओल्डर वुमेन, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स. यू विल सी समवन यू नो इन दिस म्यूजिक वीडियो. बट द बेस्ट पार्ट इज हाउ अदनान सामी इज फुली प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द वीडियो. एक्सप्रेसिव स्टाइलिंग, वेरी ट्रांसफॉर्म्ड लुक. उनके सुरमे पे ध्यान देना, बट गाना उन्होंने बहुत फन बनाया. और बहुत वक्त के बाद हम एक ऐसा हाई पेपी पॉप गाना सुन रहे हैं फ्रॉम अदनान सामी. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. नया नवेला गाना डेब्यू कर रहा है सीधा ऑन गाना नंबर 8, अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, अदनान सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। दरअसल हम आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aapko सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना ना, तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वॉज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अशकाय और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना number 5। You are listening to गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy। Number 5।

0: माजला 21 का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए ही गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन, तेरा चेहरा इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक पूरा जमाना याद आ जाता है. अदनान सामी की आवाज में दैट वॉज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड दिस इज वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनिका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर आई टेक यू टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। देन मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 6।
2: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर रंग।
1: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
0: Number 1.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेंद्र सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
0: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स, पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फिल्म कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: हार्ट का पानी। एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा है इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने। रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेक ओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 3.
3: Wow.

अभी दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but शरारत बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: बस तुम रहते हो।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

रहनी रहनी

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो अमेरिका में ना दो चीजें कभी टाइम पर नहीं आती है, सबवे की ट्रेन और देसी लोगों का बस 5 मिनट और। गुड मॉर्निंग माय पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग्स जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी होस्ट एंड तुम्हारी डेली केओस कोऑर्डिनेटर, तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट आरजे, ब्रिंगिंग यू बॉलीवुड की बातें एंड ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट वाइब्स ऑल इन वन कॉम्बो प्लेटर। और यार इंडियन एक्सपैट लाइफ भी क्या लाइफ है, राइट? घर पे मम्मी बोलती है जल्दी उठ जाओ, और अब यूएस में अलार्म बोलता है रेंट भरना है बेटा, उठ के काम पे चलो। आज का वेदर जो है वो कैसा है ये बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल वातावरण एकदम मिर्चीदार बन चुका है क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स ओनली योर फेवरेट शो हैज जस्ट बिगन। मेरा नाम है प्रिसला, मैं इस शो की होस्ट हूँ, अगले कुछ घंटों के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही मिर्चीदार होने वाली है। एंड अगर दिन की शुरुआत मिर्चीदार हो जाए तो आगे का पूरा दिन एकदम स्पाइसी हो जाता है। फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अब चलाते हैं तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

इमेजिन वेकिंग अप वन डे एंड डिसाइडिंग आज हिस्ट्री बनाते हैं. और वैसे ही कुछ दिनों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं. टाइम ट्रैवलिंग पर चलते हैं फटाफट से. मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. 1754 में जॉर्ज वॉशिंगटन, यस बिफोर द डॉलर बिल फेम, किक्ड ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर. Fast forward to 1937, Volkswagen was founded in Germany and honestly, every desi uncle in New Jersey probably whispered, mileage kitna deti hai ye? 1959 mein cutest astronaut ever, space monkeys Abel and Baker came safely back from space. 1961 gave us Amnesty International in London, an organization fighting for human rights worldwide. Aur phir 1998 mein Pakistan conducted nuclear tests in Chagai Hills. After India's tests earlier that month. Or 1964 May, India bid farewell to Jawaharlal Nehru with state honors in Delhi. I'm sure iske baad tumhe history boring nahi lagti hogi. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Instagram aur X par mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mujhse connect karne ke liye number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

मिर्ची इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और आप तुम्हारे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के साथ टी फ्रॉम बॉलीवुड। सो अपेरेंटली रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट फरहान अख्तर एंड रितेश सिडवानीज एक्सेल एंटरटेनमेंट सेड नै टू रणवीर सिंह रिपोर्टेड कॉम्पेंसेशन ऑफर आफ्टर डॉन 3 सिचुएशन। रूमर मिल फुल स्पीड पर चल रही है और कह रही है कि रणवीर सिंह अलेजेडली ऑफर्ड अराउंड 10 करोड़ कॉम्पेंसेशन एंड फ्यूचर फिल्म डिस्काउंट्स वर्थ 25 करोड़ रुपीज। मतलब बंदे ने लिटरली खुद पर बाय वन गेट टू फ्री ऑफर दे दिया है। बट सोर्सेज क्लेम एक्सेल वाजंट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग आफ्टर द होल डॉन 3 मेस। आउच, द रिजेक्शन प्रोबेबली हर्ट मोर देन सीइंग योर हिंज मैच अपलोड शादी के पिक्चर्स 3 months आफ्टर मीटिंग यू। एंड वेट, इंटरनेट डिटेक्टिव्स ऑल्सो डग अप अ लिस्ट ऑफ फिल्म्स रणवीर रिपोर्टेडली पास्ड ऑन बिफोर दे बिकेम ह्यूज। वन वॉज कबीर सिंह, देन देर वॉज एनिमल, देन सैम बहादुर एंड लव एंड वॉर एंड बॉम्बे वेलवेट। ऑनेस्टली बॉलीवुड के कास्टिंग डिसीजंस ना अब मुझे ऐसे फील होते हैं जैसे कि बाजार जाकर एवोकाडो चूज करना। पता नहीं चलता है कि अंदर से अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यार, क्रिएटिव डिफरेंसेस हैपन इन सच लाइन ऑफ वर्क्स, स्केड्यूलिंग इश्यूज हैपन एंड कभी कभी स्क्रिप्ट सुन के एक्टर्स खुद ही कह देते हैं यार मैं घर जा रहा हूँ, पैकअप करो। वैसे भी पैकअप से बहुत दूर हूँ मैं, तो चलाती हूँ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए राइट हियर राइट नाउ। रिमाइंड यू कि जाकर मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज डालो यार, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

हेलो माय पीपल, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी आ चुकी है वेदर का हालचाल जानने की। राइट नाउ इट्स अराउंड 65 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, लेकिन थैंक्स टू हमारी हवा माता इट्स फीलिंग मोर लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई मेजर सीन आज के दिन है नहीं। लास्ट 24 आवर्स में बेरली एनी रेन वॉज देयर, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स भी काफी ड्राई लग रहे हैं। सो यस, योर फ्रेशली वॉश्ड कार कैन फाइनली टेक अ साई ऑफ रिलीफ। सुबह 7 बजे से लेकर अब तक पार्टली क्लाउडी वाइब्स तो चल ही रही है, लेकिन अब से थोड़ी सी देर बाद सनशाइन जो है वो हमारी लाइफ में एंट्री मारने वाली है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। Today's temperature range is between 60 to 75 degrees Fahrenheit, which honestly means कि आज का वेदर जो है वो फिर से गेस द सीजन खेल रहा है। कल तक 83 डिग्रीज फारेनहाइट था और आज है 75 डिग्रीज फारेनहाइट का मैक्स टेम्परेचर। ब्रो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आर यू माई एक्स? एनीवे, जोक्स अपार्ट, आज के दिन बाहर निकलने के टाइम पर लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, बिकॉज सुबह सुबह ठंडी रहने वाली है, आफ्टरनून में थोड़ा एसी वेदर हो जाएगा और इवनिंग में फिर से थोड़ी सी सर्दी लगने वाली है तुम्हें। और बाहर जा ही रहे हो इतना बन ठन कर, तो सनब्लॉक कैसे भूल जाओगे? एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस लेकर जाना मत भूलना, लगाकर जाना मत भूलना, और साथ साथ में खुद को हाइड्रेटेड रखना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की वाइब कैरी करो अपने साथ में, मुझे भी अपने साथ में रखो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी टाइम फॉर सम मिर्ची दैर म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड, stay hot.

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

हेलो देयर माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन योर फेवरेट शो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है सबसे पहले एक्टर एंड ट्रैवल ब्लॉगर शहनाज ट्रेजरी वाला स्पार्क्ड मेजर डिबेट आफ्टर पोस्टिंग अ वीडियो कंपेयरिंग क्लीनलीनेस इन इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग अ विजिट टू एला रेलवे स्टेशन। सम पीपल अग्रीड विद हर कमेंट्स अबाउट सिविक सेंस एंड लिटरिंग व्हाइल अदर्स फेल्ट द कंपैरिजन वाज टू हार्श एंड जनरलाइज्ड। नंबर टू पर अ वीडियो ऑफ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह फीडिंग स्ट्रे डॉग्स सर्फेस्ड ऑनलाइन आफ्टर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिपोर्टेडली स्क्वॉश्ड हर एंटिसिपेटरी बेल इन द ट्विशा शर्मा डेथ केस। द वीडियो ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस ऑनलाइन विद मेनी क्वेश्चनिंग द टाइमिंग एंड पब्लिक परसेप्शन अराउंड इट। रिपोर्ट्स ऑल्सो से अ सीबीआई टीम हैज रीच्ड द रेजिडेंस। एज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग एंड पीपल ऑनलाइन आर रिएक्टिंग इमोशनली टू द डेवलपमेंट्स। एंड नंबर थ्री पर क्रिकेट से यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हिमसेल्फ रिएक्टेड आफ्टर 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी ब्रोक हिज आईपीएल सिक्स हिटिंग रिकॉर्ड। गेल कॉल्ड हिम द न्यू सिक्स मशीन ऑन एक्स आफ्टर द यंगस्टर स्मैश्ड 65 सिक्सेस दिस सीजन। फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड एक्स एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएपर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, it's hot.
1: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो, पिया ले लो.

0: medical doctors.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में on Military Mornings. और आज का अपडेट इज फॉर everyone whose screen time report comes with emotional damage.
2: मिर्ची वॉच इट.
1: So Meta, aka the company that owns Instagram, Facebook and WhatsApp, is now testing brand new plus subscription plans. मतलब social media apps ने अब official कर दिया है कि भाई free में use नहीं करना है तुमको और ज़्यादा. Instagram and Facebook plus plans may cost around $3.99 a month, while WhatsApp's plan could be around $2.99 monthly. And what do you get in exchange? Fancy profiles, customizations, super reactions, story insights and extra creator features. Translation, basically now even your good morning WhatsApp message can be premium packaging. Honestly, our desi parents are already ahead of this trend. Their subscription model is simple. Beta, shaadi kar lo, uske baad unlimited family notifications free mein tumhe milenge. And imagine paying monthly just to know who ignored your story. Bhai, heartbreak to already complimentary tha. Us par tax lagane ki kya zarurat hai? Waise, creators and small businesses might actually love these tools, especially those running side hustles, जैसे कि food pages, dance reels, या फिर meme empires. Also, can we appreciate how social media has evolved in last 5 years? पहले हम लोग blurry pictures upload करते थे और आज उसी को हम filter कहते हैं. पहले backlit photos को हम delete कर दिया करते थे, आजकल वो Instagram के filters बनकर trend कर रहे हैं. फिलहाल जल्दी से जाओ, मुझे follow करो. मिर्ची प्रिस is my handle name across social media, Instagram, X, सब जगह पर. और WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033 6 4 7 2 4. अभी चिपक के बैठो यहीं पर, मिर्चीदार गाने आने वाले हैं. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

हेलो माय बर्थडे बेबीज ऑफ मे 28th, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज ऑफ कोर्स योर फेवरेट शो मिर्ची मॉर्निंग. और यहाँ पर ऑफिशियली आई एम सेंडिंग यू वर्चुअल केक्स, जादू की झप्पी, लाउड बॉलीवुड म्यूजिक एंड परमिशन टू इग्नोर कैलोरीज टुडे. तो अभी पता करते तुम्हारे साथ कौन है जो तुम्हारा स्पेशल डे शेयर करते हैं. सबसे पहले वी गॉट अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस कॉल्ड कैरी मलिगन, एक्टर जेक जॉनसन एंड पॉप क्वीन काइली मिनोग एंड म्यूजिक लेजेंड ग्लैडिस नाइट. मतलब ये सारे टैलेंटेड लोग आज के दिन इस धरती पर आए थे. प्लस जेम्स बॉन्ड क्रिएटर इयान फ्लेमिंग वॉज ऑल्सो बॉर्न टूडे. सो टेक्निकली इफ यू आर बॉर्न टूडे देयर इज अ टाइनी चांस यू आर सीक्रेटली ड्रामेटिक, वेरी स्टाइलिश एंड स्पाइंग ऑन योर एक्स थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरीज. एंड हमारी देसी साइड पर टूडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ विनायक दामोदर सावरकर एंड तेलुगु सिनेमा लेजेंड प्लस फॉर्मर आंध्र प्रदेश सीएम एन टी रामाराव.

तो अभी खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और कैलोरीज की चिंता ना करते हुए मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं, उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे? आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ऐसे कैसे जा रहे हो बाहर यार, अपना राशि फल तो जानकर जाओ। मैं हूँ प्रिस्सिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड यू गेस्ट इट राइट, इट्स टाइम फॉर
1: मिर्ची राशि जोन।
0: Starting with Aries, yani ki mesh rashi, someone's pitching a life-changing idea today. Relax, Shark Tank judge mat bano immediately. Pehle facts ko check kar lo. Lucky color for you is black, lucky number is 9. Taurus, yani ki Rishabh rashi, aaj details mein mat uljo yaar, big picture pe focus karo because your instincts are smarter than half of the people in office meetings anyway. Aaj tumhara lucky color is lapis blue and lucky number is 22. Wow, that rhymed. Gemini, yani mithun rashi, आज अननेसेसरी ड्रामा को इग्नोर करो, लेट पीपल आर्ग्यू इन पीस व्हाइल यू सिप योर चाय कॉफी एंड साइलेंटली जज देम। लकी कलर फॉर यू इज आर्कटिक ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, वर्क लाइफ अपग्रेड मांग रहा है, ओल्ड मेथड्स को रिटायर कर दो बाबा, जस्ट लाइक योर अंकल्स फॉरवर्डेड फेसबुक जोक्स। लकी कलर फॉर यू इज लाइम, लकी नंबर इज 14। लियो यानी कि सिंह राशि, आज थोड़ा सा ईगो पार्किंग में छोड़ दो, हर बैटल को फाइट करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट डिटूर्स कभी कभी एनर्जी और हेयर स्टाइल दोनों बचा लेते हैं। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 1। वगो यानी कन्या राशि, मनी मैटर्स पे केयरफुल रहना आज के दिन, इमोशनल शॉपिंग या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स दोनों से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 18। और ये था पहला राशि जोन। दूसरा राशि जोन यानी कि बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक माई क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज सोशल बैटरी थोड़ी सी लो हो सकती है। इट्स ओके टू स्किप प्लान्स एंड रोमांस योर ब्लैंकेट इंस्टेड। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो टेंशन तुमको खाई जा रही है ना, मोस्ट लाइकली इट्स हार्मलेस। यूनिवर्स लिटरली हैज योर बैक राइट नाउ, सो वॉक विथ कॉन्फिडेंस बेब। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लैक, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज फिल्टर को यूज करो वर्ड्स पे। सच बोलना अच्छा तो होता है, लेकिन नेसेसरी सैवेजरी से थोड़ा सा बच के रहना भी जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज सनसेट येलो, लकी नंबर इज 3। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, स्टॉप थिंकिंग दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। थोड़ा पॉजिटिविटी भी इंस्टॉल करो सिस्टम में, नॉट एवरी ईमेल इज अ पर्सनल अटैक। लकी कलर फॉर यू इज व्हाइट, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग टुडे, हाँ इवन यू। फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड बाकी सब कुछ सीन पे ही छोड़ दो मेंटली। लकी कलर फॉर यू इज पिंक, लकी नंबर इज 30। पाइसीज यानी मीन राशि, यू लुक टफ बट इनसाइड थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। स्माइल मोर टुडे, योर वरीज डोंट डिजर्व फ्री रेंट इन योर हेड, समझे। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 7। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर 2। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज ऑफकोर्स मिर्ची मॉर्निंग्स। अब चलाते हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, तब तक तुम मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

जस्ट लाइक सैलरी रेंट भर के खत्म हो जाती है, वैसे ही मिर्ची मॉर्निंग्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। मेरा नाम है प्रिसिला, रैपअप का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक ढिंचैक खबर बताकर जाती हूँ। रिमेम्बर सेल्फी मैंने ले ली आज नहीं, रिमेम्बर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। ओए अरे मैं ढिंचैक पूजा की बात कर रही हूँ, शी इज ऑफिशियली मैरिड। पूजा जैन AKA ढिंचैक पूजा ने शेयर किए हैं क्यूट स्निपेट्स फ्रॉम हर वेडिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड कैजुअली ड्रॉप्ड द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी। बट हियर्स द मिस्ट्री, शी स्टिल हैजंट रिवील्ड द ग्रूम्स फेस। मतलब कि उनके फैंस को और इंटरनेट को FBI एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी, देसी आंटीज तो ऑलरेडी जूम कर करके पिक्सल फाड़ चुकी है। ऑनेस्टली आइकॉनिक बिहेवियर है ढिंचैक पूजा की तरफ से, प्राइवेसी लेवल इज 3000। तो ढिंचैक पूजा और उनके ढिंचैक मिस्टर पूजा को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढिंचैक पूजा के फैंस को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जाते जाते आज अगर कोई ईद मना रहा है तो उसे बिग वार्म ईद मुबारक। मे योर डे बी फिल्ड विद लव, लाफ्टर, गुड फूड एंड रिलेटिव्स आस्किंग यू फॉर ईदीज। अभी इसी नोट पर टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोले तो प्रिसिला। मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-2444। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: यादें हैं।
1: ईद आई और बचपन की ईद को याद ना किया, ऐसा कैसे हो सकता है यार।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची, और आप सभी को तहे दिल से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अब पता है क्या, ये ना इस ईद की बात नहीं है, ये हर ईद के साथ होता है कि मैं जब भी ईद आती है ना तो बचपन की ईद को जरूर याद करती हूँ, क्योंकि बचपन की ईद बड़े होने वाली ईद से ज्यादा स्पेशल हुआ करती थी। पता है क्यों? क्योंकि बचपन की ईद ना बड़ी बेफिक्र हुआ करती थी, उड़े दिल बेफिक्रे वाली। और नहीं तो यार, अब जब बड़े हो गए हैं तो यार हम खुद सफाइयां कर रहे होते हैं, हम खुद धुलाइयां कर रहे होते हैं, खुद के कपड़े खुद ही सिलवाने होते हैं, खाने भी बनाने होते हैं, गेस्ट को भी देखना होता है और खुद का खाना भी देखना होता है। कितना सारा काम आ गया बोलो। बचपन में पता है क्या होता था, ठाट से बैठे रहते थे हम लोग ड्रॉइंग रूम में, और मम्मी जो है वो खाने भिजवाती रहा करती थी, कभी शीर खुरमा आ रहा है तो कभी सैंडविचेस आ रहे हैं तो कभी बिरयानी आ रही है। ओए होए, अब तो खुद ही लाना पड़ता है यार। इनफैक्ट जो लाने वाले इंसान होते थे और भेजने वाले इंसान होते थे, हम एक्चुअली उस जगह शिफ्ट हो गए, सीधे ड्रॉइंग रूम से किचन में। आई थिंक ईद के मामले में भी दैट इज अडल्टिंग, बट एनीवेज जो भी हो, ईद का मजा तो खाने पीने ओढ़ने पहनने और गप्पे लगाने में ही है, क्या बोलते हो? तो चलो फिर आज हो जाए ईद की सेलिब्रेशन मिड डे मोहब्बत पर। 90s के गियर में गाड़ी को डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सारा ज़माना सारा का दीवाना
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हालांकि ये फिल्म रिलीज तो लेट 80s में हो गई थी, लेकिन ये फिल्म का चार्म ऐसा था कि हम इस फिल्म को देखते देखते बड़े हुए। एंड द फिल्म इज चालबाज।
1: मिर्ची VCR।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये फिल्म हमने न जाने कितनी बार देखी है। DD1 पे आई है तब देखी है, फिर केबल आ गया और ZTV पे जब ये आया करती थी तो भी हम कभी मिस नहीं करते थे चालबाज को देखना। भले कितनी बार देखी हो, हमेशा हमें लगता था यार ये फिल्म तो देखना बनता ही बनता है। इतना ड्रामा, इतना अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग, एंड ऑफकोर्स श्रीदेवी का चार्म, उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमेडी, एवरीथिंग वाज जस्ट कमाल एंड धमाल इन दिस फिल्म। बट डिड यू नो कि इस फिल्म की कास्टिंग के लिए सनी देओल से पहले अनिल कपूर को चूज किया गया था, लेकिन फिर उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्हें लगा कि अगर श्रीदेवी उनके ऑपोजिट होंगी ना तो उनका कैरेक्टर ओवरशैड हो जाएगा। एंड ही वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल, हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन तो श्रीदेवी ने ही खाली थी इस फिल्म के अंदर। इवेंचुअली देन रजनीकांत एंड सनी देओल वर कास्ट इन द फिल्म, एंड द रीजन दैट सनी देओल टुक दिस रोल वॉज कि he got inspired and motivated by the fact कि धर्म पाजी ने भी अपनी जवानी के टाइम में सीता और गीता करी थी डबल रोल वाली फिल्म। तो सनी देओल ने कहा कि जब पापा ने करी है तो why not me? एंड ऑफ कोर्स सीता और गीता सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के लिए इंस्पिरेशन नहीं थी, चालबाज की स्टोरी के लिए भी काफी बड़ी इंस्पिरेशन थी। सीता और गीता जिसने देखी है और चालबाज फिर देखी है, दोनों लोगों को समझ में आ गया होगा। बट कमाल की बात है ना यार, मम्मा की फेवरेट वॉज सीता और गीता और हम बच्चों की फेवरेट वॉज चालबाज एंड स्टिल इज। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये बात तो मिलेनियल्स और उनके पेरेंट्स को भी पता है कि चालबाज जब बनी थी तो वो सीता और गीता का रीइंटरप्रिटेशन ही थी, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता है कि कमल हसन का भी इस फिल्म के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड कमल हसन का डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यूं है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे पंकज पारेशर, वो अक्सर कमल हसन, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त थे, उनसे कंसल्ट किया करते थे स्क्रीन प्ले को लेकर, ताकि इस फिल्म का एसेंस जो है वो बना रहे और वो बिल्कुल वैसी ना हो जाए जैसे कि सीता और गीता थी, यानी कि इसके अंदर कुछ नया फ्लेवर आए। एंड थैंक्स टू श्रीदेवी दैट रियली हैपेंड। लेकिन आपको पता है, जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था दैट टाइम, श्रीदेवी को 103 फीवर था भाई। उसमें भी उन्होंने ये आइकॉनिक रेन डांस सीक्वेंस किया। बुखार है तो इंसान नॉर्मल काम फिर भी करने का सोच लेगा, लेकिन रेन डांस सीक्वेंस, हैट्स ऑफ टू हर बॉस। लेकिन फिर हुआ भी क्या, ऊपर वाला भी ना किसी के टैलेंट को, उसकी मेहनत को देखकर नवाज ही देता है। इस गाने के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एंड इन फैक्ट श्रीदेवी आल्सो अर्नड हर बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस फिल्म। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सर्टेन टाइम तक हमारे पास केबल टीवी पर चैनल्स बहुत कम थे, जिनमें स्टार प्लस भी एक था। वो होते हुए भी नहीं था क्योंकि वो इंग्लिश में चला करता था यार।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। याद है कैसे हम रिमोट लेकर उस चैनल को तुरंत बदल देते थे जो स्टार प्लस हुआ करता था, क्योंकि इंग्लिश शोज तब हमारे बस की बात ही नहीं थी ना यार। इतने मैच्योर शोज हुआ करते थे, समझ ही नहीं आते थे, सर के ऊपर से जाते थे, बाउंसर हुआ करते थे, और वो सब कुछ हमें अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा बोरिंग लगा करता था। लेकिन फिर एक दिन एक नए सफर की शुरुआत हुई और स्टार प्लस ने अपना पहला हिंदी शो लॉन्च किया। बस वही टाइम था जब हम सबका दिल जीत लिया था स्टार प्लस ने। धीरे धीरे वो चैनल जो कभी हम इग्नोर किया करते थे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। कहानी घर घर की से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू तक, एक नए एरा की शुरुआत हो गई। आज भी जब कभी ऐसे घर में जाती हूँ ना जहाँ पर टेलीविजन चैनल्स ओटीटी की जगह फॉलो किए जाते हैं, तो रिमोट हाथ में आते ही ना स्टार प्लस पे उंगली जरूर जाती है, शायद इसी उम्मीद में कि कहीं वो पुराने दिन ही वापस आ जाए। हाँ, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आफ्टर अ सर्टन पॉइंट छोटी छोटी रातें मोहब्बत में लंबी नहीं हो जाती है मेरे दोस्त, उम्र का तकाजा भी होता है। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर आपकी छोटी छोटी रातें लंबी हो रही हैं और आप अक्सर नींद से जग जाते हो, तो या तो अपना लिवर चेक करवाओ या फिर मैग्नीशियम की गोली सोने से पहले खाओ, सब ठीक हो जाएगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Zara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो कि आरजे तो है ही है, पार्ट टाइम घरेलू डॉक्टर भी हूँ मैं। हाँ, मतलब जहाँ कहीं मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाती है ना हेल्थ रिलेटेड, तो मैं वो बात ना लोगों में बांट देती हूँ। अब वो घर वाले हो, दोस्त हो, ऑफिस वाले हो या फिर आप, क्योंकि मम्मा हमेशा कहा करती हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। अब आप डिसाइड कर लो कि ये खुशी में आता है या गम में आता है। अपन तो आगे बढ़ते हैं विद मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर रोज की तरह दो गाने मैं मिक्स करके आपके लिए चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने आप सुन रहे हो ये धुने कौन से गानों की है। तो जी, आज की धुने हैं कुछ यूं।

बस जी, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दो कि ये दो गानों की धुनें जो आपने अभी सुनी ये है कौन सी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कयामत से कयामत तक मूवी के इस गाने के बारे में जब मुझे पता लगा ना, तो कयामत आ गई। बाय गॉड,
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड कयामत से कयामत तक का ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था ना, तब मोहब्बत में मेरा दिल टूटा था, और उसके बाद आज इस गाने को सुनकर मेरा दिल टूटा है। कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं? गिव इट अ लिसन।
3: अकेले हैं तो क्या गम है।
1: Well, this was actually inspired by a track जो कि 1977 में रिलीज हुआ था by a band जिसका नाम था Shadows, और इस गाने को कहा जाता था Return of the Alamo। सुनिए जरा इस गाने को। मान गए किसे? आनंद मिलिंद और उनकी पसंद, तीनों को। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, it's hot।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको याद है वो अखबार के कोने में छिपी हुई क्रॉसवर्ड की पहेलियाँ?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और वो छोटी छोटी ब्लैक एंड व्हाइट ग्रिड्स जिनमें छुपे होते थे ढेरों सवाल और जवाब ढूंढने की वो एक्साइटमेंट, सुबह की चाय, पापा का अखबार पढ़ना और हम बच्चों का पेन लेकर उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करना, कभी दिमाग से तो कभी थोड़ा बहुत चीटिंग करके। और मजा तो तब आता था जब कोई मुश्किल सवाल फंसा रहता था और पूरा घर उसे हल करने में लग जाता था। अरे भाई, 5 अल्फाबेट्स का वर्ड है, पहला अल्फाबेट है क से, बताओ तो सही। और फिर जैसे ही सही जवाब मिलता ना, लगता जैसे कोई बड़ी सी जंगी जीत ली हो। आज के डिजिटल दौर में भले ही मोबाइल पर गेम्स की भरमार हो, लेकिन उस क्रॉसवर्ड का जो क्रेज था ना, वो कहीं गुम सा हो गया है। क्या आपको भी वो पुराने दिन याद आते हैं? कौन सा क्रॉसवर्ड क्लू था जिसे हल करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया करता था? बताइए ना हमें, मिलकर फिर से उन सुनहरी यादों को जी लेते हैं। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर स्कूल के लास्ट पीरियड,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना दिल में एक अजीब सी गुदगुती और सुकून भर जाता है। तुम वो थे जिसका इंतजार पूरे दिन की थकान के बाद हर दिल को रहता था। हम सबकी बॉडी लैंग्वेजेस लास्ट पीरियड तुम्हारे आते ही ना बदल सी जाया करती थी। एक अलग सा इम्पेशेंस नजर आ रहा होता था हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि कब ये घंटी बजे और कब हम स्कूल से निकले। तुम वो आखिरी घड़ी नहीं हुआ करते थे, आजादी की दस्तक हुआ करते थे। तुम वो खिड़की थे जिसके पार शाम की हवा, दोस्तों की खिलखिलाहटे और घर में मम्मा इंतजार कर रही होती थी। और तुम्हारे बाद की वो घंटी, हाय क्या कहें उसके बारे में। वो तो ऐसी थी जैसे किसी कैदी को बेल मिल गई हो। वो तो ऐसी थी जैसे कि कानों में कोई खूबसूरत सा म्यूजिक पड़ गया हो। और उस घंटी को सुनते के साथ ही हम सारे के सारे क्लासमेट्स एक साथ कहा करते थे, ये जैसे कि अगले दिन स्कूल ही ना हो। लेकिन यही तो बात थी तुम्हारी कि तुम वो एक पल थे जिसको हम पूरी तरह से इतनी खुशी से जिया करते थे विदाउट रियलाइजिंग बचपन की मासूमियत में कि कल फिर स्कूल आना है, कल फिर वही चक्का चलेगा। इतनी खुशी का एहसास तो आज भारी भरकम जेबों के साथ भी नहीं होता है जितना कि तुम्हारे उस पल में हुआ करता था। जैसे ही तुम्हारे आखिरी पल आया करते थे ना लास्ट पीरियड, तो हमारे दिल की धड़कनें भी हमें कहा करती थी कि बस थोड़ी देर और फिर उड़ जाना है तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। कभी कभी तो कुछ टीचर्स आखिरी पल तक पढ़ाती रहती थी, लेकिन जहाँ घंटी हमने सुन ली तो हमें तो और कुछ ना नजर आता और ना ही कुछ सुनाई दिया करता था। लेसन का वो आखिरी चंक हमेशा ही अनरिजॉल्व्ड रह जाया करता था। तुम्हारे बाद तो और मजे आया करते थे, दोस्तों के साथ हाथ डालकर निकल जाया करते थे, कभी समोसे की दुकान पर तो कभी सीधे बस में, और कभी यूं ही बेमकसद घूमते रहा करते थे। वैसे एक बात बोलूं, तुमसे विदा लेना भी कभी आसान नहीं था। स्कूल का वो आखिरी दिन जब तुमसे आखिरी बार मिले थे ना, और वो घंटी जब आखिरी बार सुनी तो एकदम से झटका लगा और ख्याल आया कि ये वो पल था जो इतने सालों से हम स्कूल में एंजॉय किया करते थे, जिसकी राह तका करते थे। लेकिन वो दिन जब तुमसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी और आखिरी बार स्कूल की वो बेल बजी थी छुट्टी का ऐलान करने के लिए, वो दिन मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया। उस दिन मुझे बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हुआ कि स्कूल खत्म हो गया है, क्योंकि उस दिन स्कूल वाकई खत्म हो गया था। ये वो दिन नहीं था हर रोज की तरह जब अगले दिन फिर स्कूल आना होता था और फिर वही चक्का चलाना होता था। ये वो दिन था जिस दिन के बाद से हमने असल दुनिया में कदम रख दिया और मासूमियत वो क्या होती है वो सब भूल गए। अब जिंदगी के इस स्कूल में तुम्हारे जैसे उस आखिरी पीरियड की कोई जगह नहीं होती। यहाँ छुट्टी की घंटी नहीं बजती, लेकिन यकीन मानो तुम अब भी यादों की क्लास में रोज आते हो और वही पुराना सुकून दे जाते हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में परीक्षा देती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल चाहता है ये वो मूवी है जिसको ना सिर्फ बार बार देखने का दिल चाहता है बल्कि इसके गाने भी बार बार सुनने का दिल चाहता है। और इसी के साथ शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना इज कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वो लड़की है कहाँ? वेल, इस सवाल का जवाब काफी सारे लड़कों को तब से लेकर अब तक मिल चुका होगा और काफी सारे अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये गाना तब बना था, आज तक भी इसकी रेलेवेंस है एंड इसका म्यूजिक वो भी पुराना नहीं हुआ है। शंकर एहसान लॉय का कंपोज किया गया ये गाना जिसको लिखा जावेद साहब ने है। वेल, ये गाना इज अ ब्यूटिफुल वन, अ पेपी वन एज वेल, एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग वॉज द कोरियोग्राफी ऑफ दिस गाना विच वॉज डन बाय फराह खान। ये स्टेप इतना हिट हुआ ना कि तब से लेकर आज तक जब भी कभी ये गाना घर की पार्टी हो या फिर कोई पब हो या फिर स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो, जब भी जहां कहीं बजता है, छोटे से लेके बड़े तक को इस गाने का जो सिग्नेचर स्टेप है वो पता है और सब वही करते हैं। इनफैक्ट अगर ये गाना कभी कहीं फ्लैश मॉब में चल जाए ना, तो वो जो सिग्नेचर स्टेप है वो तो सबके

सब एक साथ निकाल लेंगे विदाउट एनी डाउट। हालांकि दिस फिल्म एट दैट टाइम वॉज वेरी मॉडर्न, इनफैक्ट आज भी जब इसको देखते हैं तो बड़ी मॉडर्न लग रही होती है। और इस गाने के अंदर काफी सारी जगहों पे 90s का फैशन कॉपी किया गया है, डांस हो या फिर कपड़ों के लुक हो, ये काम तो सिर्फ फराह खान ही कर सकती थी आई गेस। और ये गाना गाना तो है ही, मगर बड़ा ही डायलॉग बाजी वाला गाना है कि यहाँ पर लड़का जो है वो लड़की से बात भी कर रहा है, एक ख्याल भी बता रहा है और फिर बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग अपने जज्बात भी बयां कर पा रहा है। और सारा का सारा जो है वो बड़े म्यूजिकली इन अ डायलॉग फॉर्म हो गया है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्वाब में तुम ही तो हो, जान लो मेरा अरमान है कि मेरे साथ ही अब तुम रहो, जिस पर लड़की कहती है कि मुझे तुमने क्या ये समझा दिया, मेरे दिल को जैसे धड़का दिया, मेरे तन बदन को पिघला दिया, वो सुनाए दास्तान। ये काम जावेद साहब जितनी स्मूथली कर लेते हैं ना, आई एम रियली सॉरी फॉर द न्यू राइटर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्मूथ काम मैंने नए राइटर्स में नहीं देखा है। और इस गाने को इतना पसंद करती हूँ तो क्यों ना इस गाने को आपके लिए चला ही देती हूँ। जाते जाते ये गाना आपके लिए, और इसी के साथ मैं कहती हूँ हमें राई प्यार किए लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये लिखा है मुंशी अमीरुल्ला तस्लीम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। थोड़ा सैड हो गया मामला, रोमांटिक वाला सुनते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। कैसर उल जाफरी ने ये लिखा है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

उमराव जान फिल्म बनने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी दिक्कतें। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत जीवन में क्या होती है? पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत थी इस फिल्म के बनने में। कितनी बार ऐसा हुआ कि फिल्म बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके फिल्म बना दी गई। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स में ना रेखा ने जो कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी पहनी है, वो उनकी खुद की है। चलिए, समवेयर इट पेड ऑफ, फिल्म को नेशनल अवार्ड्स मिल गए। और आपको मिल रही है यहाँ पे वही पुरानी दुरानी एक चीज, वो है ब्रेक। बट इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक, ऑफ कोर्स गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।

0: हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार सिर्फ एक अमेजिंग एक्टर ही नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंसान भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। दादा मुनि बहुत काइंड हार्टेड थे, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे फिल्म टेक्नीशियंस की उन्होंने मदद की है। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट भी फेमस है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टेक्नीशियन को चोट लग गई थी, तब दादा मुनि मेड श्योर कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद ही शूटिंग वापस से शुरू हो। अशोक कुमार साहब ने बहुत से नए टैलेंट को चांसेस दिए, उनके साथ काम किया, उनकी हेल्प की, उनको गाइडेंस दी, इंक्लूडिंग हिज यंगर ब्रदर्स अनूप कुमार एंड किशोर कुमार। पर उन भाइयों की फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो साहब चलती का नाम गाड़ी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

जो प्यार से हर पल प्यार करे, वो शायर आशिक आवारा, मैं गंगा तट का बंजारा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लाइंस लिखी थी अनजान साहब ने, जिनका असली नाम लालजी पांडे था, जो बनारस के थे। और उनकी पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी कविताओं की कलेक्शन की एक बुक, जिसका नाम है गंगा तट का बंजारा, इसका लॉन्च हुआ था 1993 में और लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी में अनजान साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनके बहुत सुपरहिट गाने अनजान साहब ने लिखे हैं। लेकिन इतने हिट गाने लिखने के बाद भी अनजान साहब को एक मलाल रहा कि उनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। यार देखिए, वैसे कलाकार का काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन। थोड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो ऐसा फील करते थे, मतलब इतने सुपरहिट पे हिट गाने आप लिखो, अवार्ड भी नहीं दो, जान ले लो मतलब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

लाइफ में सोचते हैं क्या और क्या हो जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1987 की फिल्म इजाजत, इसमें ओरिजिनली नसीरुद्दीन शाह साहब के रोल के लिए संजीव कुमार को साइन किया गया था और अनुराधा पटेल वाले रोल के लिए स्मिता पाटिल को, लेकिन जब तक ये फिल्म बननी शुरू हुई ये दोनों एक्टर्स नहीं रहे। फिर नए सिरे से नए एक्टर्स को साइन किया गया। लाइफ और वक्त का कोई भरोसा नहीं है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स, सुनते हैं यहाँ पर मिर्ची पर।

ये गाना है 1978 की फिल्म दिल से मिले दिल का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ ज्यादा याद रखने वाली ये फिल्म है नहीं, लेकिन इसमें जो एक्ट्रेस थी ना श्यामली, ये कुछ फिल्मों में आई थी, कुछ हॉरर फिल्मों में भी आई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए इनको किशोर कुमार ने रेकमेंड किया था। किशोर कुमार जिस बैंक के कस्टमर थे, उसी बैंक में श्यामली के फादर काम करते थे, तो किसी तरह से किशोर कुमार ने इन्हें देखा, इनसे मिले और इनको इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया। इसी बात पर किशोर कुमार का एक और गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: कादर खान साहब एक सिविल इंजीनियर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पढ़ाई के बाद उनकी जॉब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी, जहाँ से उन्हें एक महीने बाद निकाल दिया गया। हताश निराश होकर वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया।
1: वो समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने ही कॉलेज की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, फकी साहब उनका नाम है, वो ऊपर जा रहे थे, मुझे देखा, बताया खान क्या सर मेरा जॉब छूट गया। ठीक है, इंजीनियर्स को जॉब वालों को ऐसा होता है, तो ऐसा मुंह नहीं बनाने का। और सुन एक काम कर, एक टीचर 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला, वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए, तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूँगा सर। तो टीचर बन गया। अब 2 महीने के लिए टीचर बना, वो उन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर बना जिनमें मैं खुद फेल हुआ था, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत बोर सब्जेक्ट है सर, बहुत खुश्क, और वो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती है ऐसी, साल में 15, कोई बनाता नहीं था। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मजा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा, और सर ऐसा पढ़ाने लगा, एक हफ्ते बाद मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया
0: था। शायद इसीलिए जिन रोल्स में ऐसे टीचिंग प्रीचिंग होती थी ना, कादर खान साहब बहुत अच्छे से निभाते थे। याद है मुकद्दर का सिकंदर में कैसे एक रोते हुए बच्चे को उन्होंने हंसना सिखाया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

The cult classic iconic film Guide के गाने पहले हसरत जयपुरी साहब लिखने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर किसी गाने को लेकर उनका और डायरेक्टर विजय आनंद का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया। कोई लाइन विजय आनंद साहब को पसंद नहीं आई उनकी और उस बात पे कुछ डिस्कशन हो गया जो आर्ग्यूमेंट में बदल गया और तब हसरत जयपुरी साहब ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनकी जगह पे फिर शैलेंद्र साहब को लाया गया और उन्होंने फिर इस फिल्म के गाने लिखे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सो रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी, तो शुरुआत में मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग लगी, लेकिन बाय द टाइम फिल्म एंडेड आई जस्ट लव द फिल्म। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म है 1978 की फिल्म नौकरी, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। सो ये 1978 वाली इज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, और अब तक तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्में मुझे कितनी पसंद है। इसके बारे में मुझे ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पता था, बट जब देखी तो पता चला कि वाह क्या सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट पे काफी फिल्में बन चुकी हैं, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी। सो बेसिकली इसमें राजेश खन्ना का जो किरदार है वो अपनी जिंदगी से तंग आके अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, और आफ्टर लाइफ में उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एहसास दिलाता है कि भाई तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। क्योंकि इस फिल्म को प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनरिलेटेबल, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, बट ओवरऑल द सब्जेक्ट इज वेरी नाइस। कभी कोई थॉटफुल फिलोसॉफिकल मूवी देखने का मूड हो तो ये वाली जरूर देखना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

1969 की फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना का जो ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाला रगड लुक था ना, वो काफी पसंद किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये लुक कोई स्पेशली इस फिल्म के लिए नहीं उनका सोचा गया था, ये तो ऐसे इत्तफाकन हो गया था। बिकॉज उस टाइम पे राजेश खन्ना इस फिल्म की और इत्तफाक नाम की फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे। उस फिल्म का जिस तरह का सब्जेक्ट था, इनका लुक वैसा होना था, ऐसा दाढ़ी वाला। तो दोनों फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे, दाढ़ी लिए फिर रहे थे, तो इसी से काम चला लिया गया। वैसे दो रास्ते में भी वो ऐसे हैरान परेशान से घूमते रहते हैं, तो उस तरह का लुक उनको सूट हो गया था। चलिए, आपको भी एक लुक बहुत सूट करता है, वो मुस्कान वाला लुक है। मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: लेट 60s में जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे, वीकडेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ वीकेंड्स में बॉम्बे जाते थे फिल्मों में काम ढूंढने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसी टू फ्रो में उनको ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके लिए उनको कितनी पेमेंट मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में अस्टानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, तू पुणे से आया है? हाँ सर। क्या किराया है? मैंने कहा डेक्कन क्वीन में आया। कितना? मैंने कहा 6 रुपए 6 आने। नहीं ना, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो उन्होंने बैठे नहीं थे। मैंने कहा नहीं सर, बहुत पता नहीं मुझे। अरे पता बुलाया प्रोडक्शन वाला, इधर आओ, डेक्कन क्वीन का पता करो, फर्स्ट क्लास कितने का है। गुड्डी का रोल 2 दिन का, उसके लिए मुझे देने पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा सर 21 रुपीज दे दो। 21 रुपीज और जेब लिफा डाल दिया। मैंने खोला ही नहीं, जाके जब ट्रेन चल पड़ी बाथरूम में जाके खोला तो 250 रुपए। 250 रुपए की कीमत थी और ऋषिकेश मुखर्जी दे रहे पैसे, वो तो लेते थे, देता कहाँ से। बट लकी, आई एम वेरी लकी।
0: वेल, यहाँ से शुरुआत हुई और इसके बाद तो आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ 12-13 फिल्मों में अस्टानी साहब ने काम किया होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

Mitchie, it's hot. Purani jeans with Charu, only on

क्या ही माइंड ब्लोइंग गाना है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसमें मोहम्मद रफी साहब की तो मेन आवाज है, वो जो बच्चे वाली आवाज है वो आपको पता है ना, वो सुषमा श्रेष्ठ यानी कि पूर्णिमा श्रेष्ठ यानी कि 90s की वो जो पॉपुलर सिंगर पूर्णिमा है उनकी है। 70s में ये बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड सिंगर थी, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, मतलब ज्यादातर जो बच्चों की आवाज आपने उस टाइम पे फिल्मों में सुनी है वो इन्हीं की थी, जैसे है ना बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार, अंदाज फिल्म का जो गाना है उसमें, फिर तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो वाला गाना जो है उसमें, ऐसे कई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज शो की शुरुआत जरा नॉन फिल्मी अंदाज में करते हैं।
2: श्रुति, श्रुति,
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: क्योंकि ये बातें इतनी अच्छी हैं कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है यार। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड इन जनरल हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी रहती है, इसलिए कुछ पॉजिटिव सुन लीजिए। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट दैट आई एम डिस्कसिंग इज अबाउट दिस कंट्री स्कॉटलैंड, क्योंकि इसने हिस्ट्री क्रिएट की है एज इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने पीरियड प्रोडक्ट सभी महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है। ऑन नंबर टू इज मेक्सिको, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने कॉस्मेटिक टेस्टिंग बैन कर दी है ऑन एनिमल। On number 3 is Indonesia because they have officially banned elephant riding nationwide. In fact, जो rescued elephants है ना, उनको एक safer and much humane future देने की कोशिश भी जारी है। On number 4 is about the real blue parrots जिनसे the animated movie Rio inspired रही है। और इनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि nearly 20 सालों तक disappear होने के बाद these parrots are finally returning to the wild. कसम से अच्छा लगता है ये सोच के कि देयर आर कंट्रीज जो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं बट वाइल्ड लाइफ के बारे में भी सोचती हैं। आई अग्री, वी ऑल्सो बिलोंग देयर, बट हमारे स्ट्रेस के बारे में तो अलग ही सीन चल रहा है ना यहाँ। एनीवे, नो कमेंट्स ऑन दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Energy. It's hot.
1: Aye, aye.

0: It's hot.
1: मिर्ची, It's hot.
2: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा